दास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊँचे ते ऊँचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो

0: संत सरन जो जन परै सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमति नि छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोय, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जी करे नानक, संत संग निंदक पीतर है,
1: संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्प जो न पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेर सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे ता उए पी गत पाहे, संत का नंदक महा अदताई, संत का नंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक का सर्व रोग, संत के निंदक का सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता सुखाय भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी के सहकार नहीं मित, संत के दुखी का डान लागे, संत के दुखी का सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन में मरे, संत की दुख ना सुख दे टरे, संत के दुखी का नाही टाओ, नानक संत पावे तले में लाए, संत का दुखी अध बीज ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी का ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर ते तोता, जो सास बिना मृत के लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपने बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी का आवर ना रखन हार, नानक संत पावे तले उबार, संत का दुखी इं बिललाए, जो जल बिहून मछली तरफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक इधर नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटै अकेला, जो बुआड़ तिरके तमाय दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सत मिथ्या कहत, कीर्तन निंद का तुर ही पया, नानक जो तुस भावे सुए थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले से जाए, संत का दुखी सदा से कहिए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना दृष्टै कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, भया गिरत ना मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, साव घट तिसकी उकारने हार, सदा सदा तस कौ नमस्कार, प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, तुसै ते आवो सास ग्रास, सब कुछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खे लाभ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसा बनाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोका, तजो सियान बसुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख पर जाय, अष्टपदी मानुख की टेक प्रति सब।

चरण साध के थोए थोए पियर प्रसाद को अपना जियो साधगी तूर करो शना साधु पर जाइए कुरबान साध सेव बड़ भागी पाइय सत्संग हर कीर्तन गाइए अनेक बिघन ते साधु रख हर गुण गाए अमृत रस चाख उठ के संत दरिया सर सुख नानक दे पाया मृत कौ जीवालन हार भूखे कौ देवत धार सरबन राजा की दृष्टि माहे परवरखे का लेना पाहे सब कुछ तिसका ओकार न जोग तिसमें दूसरो आना होगा जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल हे करने कर कृपा जिसका नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कह मन गुर की प्रतीत तुस जन आवे हर प्रभ चेत भगत भगत सुनिए ते लोय जाग हृदय को होए सच करनी सटता की रहत सच हृदय सतमु कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म सच कर जाता नानक सोजन सट समाता श्लोका रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिगुण ते प्राप ना जिसै बजाय नानकार सो वैसो प्रसन्न अष्टपति अविनाशी परमन में राख मान हो की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किस को सर्व निरंतर एक सो आपे बिना आपे दान गैर गंभीर घेर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शांत सातरे की चरणे पाओ नानक मन हो नराव

राज में राज योग में जोगी तप में तभी सरग्रस्त में भोगी तय तय भगत संग पाया नानक ते सपरख अग्नत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हरे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पोत सगल परोई अपने सोत समत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवे से ते गुण मैं जाका परमा जन्म रह फिर आवे जाए ऊंच नीट सिसके आसान जैसे

ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मर रीत, ठाकुर को सेव जन संग प्राप्त का सेवक नाम कह रहूंगा। सेवक का प्रपालन हारा, सेवक की रखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रवतार, नानक सो सेवक सास सास मार। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास का दे बढ़ाई, अपने सेवक का नाम जपाई। अपने सेवक की आपद रखे, ताकि गत में तो को न लाखे, प्रभु के सेवक का को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उड़ते ऊंचे। जो प्रभु सेवा लाया, नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया, निकी की मैं कर रख है, भसम कर कर कोट रख है, किसका शासन काट दे आपता को राख दे कर हाथ, मानस जतन कर्तव्य भांत तुसके कर्तव्य व्यर्थ जात, मारे ना रख अवर न कोई सर्व जिया का रख, सोए काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रबला के विडाणी, बारंबार बार प्रभु जपिय पिय मृथे मन तरपिय, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिसके शबर नाही दृष्टाया, नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख, नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवदाने, मंत नाम नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम कहो, नानक जन के सिद काम, बोल हो जस जे बादन रात, पर अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह चाए, प्रभ अपने सु रह समाय, जो हो वह हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म बिछाने, तिसकी मैं कौन बखानू, तुसका गुण कह गना जानू, आठ पहर प्रभ सह जूर कौ, नानक सीजन पूरे, माने मेरे दिन की ओटले, मन तन अपना दिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सब तो का दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अबर श्यान शकल छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवे तेरा नानक, तिस जन के पुट हो सत भैरा श्लोक, सत पुलख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सुख उदरे, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सत गुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक का गुर सदा दयाल, सिख की गुर धर्मत मल हरे, गुर वचन हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सेवक सिख बेकार ते हटे, सतगुर सिख का नाम दान दे, गुर का सिख उठ भागी, हे सतगुर सिख का हल पल सवार, नानक सतगुर सिख को जी नाल संवार, गुर कह करे सेवक जो रह, गुर की आगे मन में सहे, आपस का कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद का त्यावे, मन विच सुध गुर कह पात, सेवके काज रास, सेवा कर तो इन काम, तुसका होत बराब स्वामी, अपनी कृपा से आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की कत जाने, सो सतगुर जिसरत हर नौ, अनक वर गुर का बल जाओ, सर्विन दाजी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता।

अष्टपदी जब कार ही कृष्ण दृष्टि पाप तब कहते हो तब तारी अपन सुन समाध तब बैर रोध के संग कमाद जब इसका बन चैन न जापत तब हर कशोक सह व्यापत जब अपना आप आपार ब्रह्म तब हो कांक सोपत परम अपन खेल आप वर्ती जा नान करने हर न दूजा जब होबत प्रभ केवल धन तब बंद मुक्त का किसको गुनी जब एक कह रगम पार तब नरक सुर का कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सैर सुभाय तब शिव शक्त का कुत ठहर जब आप अपनी ज्योत रह तब कब निडर कब न कत डर रहे

त्रास खा के सोए। जब अभिगत गोचर प्रभरे का तब चेतर गब तो किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कान छुटे कान बंधन बाधे। आपने आप आपी और जजा नानका अपन रूप आपी पर जा जय निर्मल बरक बरक बात होता तय बिन मैन का क्या तो होता। जय निरंजन निरंकाल निर्वाण तय कौन का मान कौन विमान जय स्वरूप के वर जगदीश तय छाल क्षेत्र रक्त का किस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तय किस भूख कवन तृप्तावै। कारण करावन करने हार नानक करते का नाह समार जब अपने सोभ अपने संग मनाए तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे पर बीनत है वेदिक दे कहाँ को चीन। जब अपन आप उतार तो शगन अप शगन कहाँ विचार है अपन ऊंचा अपन आप निरात है कौन ठाकुर कौन कही है चेहरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जान आप। जय छल छेद भेद समाय उहां किसे व्यापत माया आप सको आपया देश ते गुण का नाही पर वेस जय एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आप आपतिया रत है कौन कथा कौन सुन नहारा।

अवष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उदर चिंत आसनित त्यागो तरंग संत चनांगी तुर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरो हर तन के पाले हो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित भाव नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमरीक लाल है रतन सुनंद कमावत हो तो उधार आप त्रय लोग निस्तार सफल जी में सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जैरे शब्द नाहद वजे सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय रगट गोपाल महंत कै माथे नान कुदरत न कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कर पर प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पे सब रेन अमृत नाम साथ संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हुए सेवक की सेवा आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी खेप मारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावताने कागन चीत सख में सहज गोविंद कुन नाम जिस मन बसै सोत निदान सार विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सब लोए सब ते उच पाय स्थान पौर्ण होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग रम ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल पर गास सब कै मद सगर ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता।

एहन सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथा लहर मह तारहो तारन हारे। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथा लहर मह तारहो तारन हारे।

गोबिंद मिलन किए तेरी परिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला, सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर

सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, बाहि गही की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया, शब्दों तां गाव हो हरि कीरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले।

नानक चाहे हो नानक चाहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने। अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी।

मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित होई है, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे हैं, रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती है, एडी तेरे विच सियाणो किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई भी सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम

महाराज जी दे चरणा विच बैठ के एक हाथ दे नाल अपनी दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार रहे। ऐ मना क्यों तेरे मन विच मैल आई। जित कराउण वाला गुरु ते तू बड़ियाइयां लई जांदा है। पढ़ो इतिहास की आख रहे ने। जोर जोर देनी चंडा अपने मुंह ते मार रहे ने। ओ काणिया वड्याइयां देण वाला गुरु ते वड्डा तू बनी जांदा है। हरी सिंह नलुआ बार सुन रहा है। सतगुरां दे कमरे विच रंजीत सिंह नू कौन बोल कबोल बोलदा है। आ जदों जाके दरवाजा खोलिया ते की तकिया रंजीत सिंह आप सतगुरां दे चरणा विच बैठा एक हाथ नाल दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार लिया है। क्यों तेरे मन विच मैल आई है। क्यों मैं मेरी आई है। सब कुछ करन वाला गुरु है। ते नलुए ने जाके हाथ पकड़ ले। रंजीत सिंघा तेरे अखां दे हंजू दस रहे ने। तू अपने औगणा ते पछता रहा। गुरु बड़ा ही दयालु है। उठ खड़

मेरा मुझ में किछ नहीं। आइक सेठ तन दौलत बड़ा कोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है मेरी भी झोली भर। सतसंगियो जंग मंगियाणी दी गल है पक्षतान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दाता मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया पुत्र वड्डा हो

तेरे घर दे अग्गों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है वी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

तेज पुंज तेहो लोक प्रगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यों कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास है तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुनकीरतवंत सदा सुख संपत हृद अर सिद्ध न छोड़े साथ दान बडोवतवंत महाबल सेवक दास कहो इहो तथ ताहि कहा परवाह काहू की जाके बसीस तरी।

ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सोरत कीनी बरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई सोडी श्री

हे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार भुख न उतरी जे

दया का पूर्ण संतोष था प्रख्या जिन सूत धरती होर पर होर तिस्ते पार तले कवन जोर ए लिखा लिख जान है कोय लिखा लिखिया किता होए किता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ जो तुर पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख सूर मोह पाक सार असंख मोन लिवलाए तार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संज

0: बात बाने नमो बात बाने
1: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
0: परमंगी परमाते समस्ति विभूते
1: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राजराजेश्वरम परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
0: नमो राजराजेश्वरम परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षी अपरमे अपोगी अपुक्ते
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम

0: स्नानं
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
0: नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि
0: अनुपे रूपे समस्तं निवासि
1: सदा सिद्धा बुद्धा बृद्धकर्ता
0: अदो अर्ध अर्थम अगमोघहर्ता
1: परम परम परमेश्वरं पोषपालं
0: सदा सर्वदा सत्यदाता दयालं
1: अचेदीय पेदीय नामं कामं
0: समस्तोपराधि समस्तस्तथामं।

0: चंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पति
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र माने।

0: क्या गंज कर्म है क्या पंज पर
1: क्या गंज लोक है क्या आदित सोके
0: क्या दूत बनने के विभूत करने
1: क्या राजन प्रभा है कि तर्मंत जाहे
0: क्या अशोक बनने के सर्वा बनने
1: क्या जंतर करती है।

0: संत्र प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम
1: हर भर गंज हर नर पर पंज
0: अन गन प्रणाम मुन मन सलाम
1: हर नर कंड पर नर मंड
0: अन पव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुन गन प्रणाम जल दल मुदाम
0: अन चिज अंग आसन अपंग
1: उपमा पारगत मिति उदार
0: जल थल अमंड दि स्विस अपन
1: जल थल महंत दि स्विस बेअंत
0: अन पव अनास ति तर उत्तरास
1: आजान बाहो एक सदा हो
0: ओंकार आद कथनी अनाद
1: कल कंड ज्ञान गुरु भरे काल
0: कर कर प्रणाम चित चरण ना
1: अंजिज गात अजिज न बात
0: अंजज गात अन रंज बात
1: अन टूट भंडार ठड़े पार
0: आ डीठ धर्म अत डीठ करम
1: अन प्राण अनंत दाता महंत
0: हर बोल मना छंत

श्रावक सुद समूह सिदान के देख फ्रयो कर जोग जति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कहो न देखत प्राण पति के माते मतंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सवारे पारी बुजान के पूपत पारी बुजान के पूप पली बित ब्या पारी बुजान के पूप पली बित न्यावत सीस ना जात बिचारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत टोर मृदंग नगारे पूत भविक भवान के

0: चार जती जतार सबे सो विचार हजार के देखें।
1: श्री भगवान पदे बिन भूपदे कृति विनेक न लिखें।
0: सुद सिपा दुरन दुबा सो सास नादर जान दलेंगे।
1: बाली गुमान परे मन में कर पर
0: तोर हरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे।
1: श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे।
0: वीर पार बड़े बरियार बिचारे सार की तार बछैया।
1: तोर देश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलेया।
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो पात नहीं चक चार लवैया।

पुंज खपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र निरादप जोंतर लोक को राज करेंगे, ब्रह्म हेसर विष्णु सचिव

0: साहब क्या नहीं करते रे
1: साचा नाम मेरा आधार
0: साच नाम आधार बिन जिन को का सब गुवाया
1: कर सान सुख मनाए बसे आज निशा सब बजाइया
0: सदा गुरु नानक कीते गुरति और रिश्ते विदियाया
1: कहे नानक सुनो संत शब्द तरु प्यारो साचा नाम मेरा आधार
0: वाजे मन सब गस पाके सब दवाजे गलत का तारिया
1: पांच दूत दवास कीते काल कंटक मारे
0: आरंभ भाई जिन जिन से नाम हर के लागे
1: कहे नानक तै सुखो आत

0: करता है खेल रचाया।
1: नीम
0: चुटकी लगी कृष्णा माया अमर बताया। कह नानक गुर प्रसादी चिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। मोल ना पाया चाहे किसे बेटो रहे लोक विल लाए। जिसका जो तिस मिल रहे हर वसे मनाए।
1: आप बोलत है भक्त ना के नाम का आज हर पल आए।
2: हरास मेरी मन मंजारा हरास मेरी मन मंजारा सतगुरु ते राह जानी।
1: हर हर नित जप हो जी हो लाह कटियो दिहाड़ी।
2: ताते ना मिलिया जिन आपे पाणा।
3: कहे नानक हरास मेरी मन हुआ बंजारा।
2: ये रसना तो अनस राच रही तेरी प्यास ना जाए।
1: प्यास ना जाए हो किता जिचर हरस पले ना पाए।
2: हरस पाए पले पिए हरस बहुत ना तृष्णा लागे आए।
3: यो हरस तनि पाए सतगुरु मिले जिस आए।
2: कहे नानक और अनस अनरस सब इसरे जा हर वसे मनाए।
3: हे शरीरा मेरा तुम में जोत रखी ता तू जग में आया।
2: जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया।
3: अरे आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए जगत दिखाया।
2: सादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
3: कहे नानक इसका मूल रचा जोत राखी ता तू जग में आया।
2: मान चाओ भया प्रभु आगम सुनया। हर मंगल गाँव सखी ग्रह मंत्र बनया।
3: हर गाँव मंगल सखिए सो दुख ना व्यापे।
2: चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे।
3: अनंत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।
2: कहे नानक आ मिलिया कर्ण कारण जोगो।
3: ए शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया।
2: के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया।
3: जिन हर तेरा रचन रचा सो हर मन ना बसाया।
2: सादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया।
3: कहे नानक के शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से हो चित लाया।
2: ये नेत्रो मेरे हथ में जोत तरी हर बिन अब न देखो कोई।
3: हर बिन अब न देखो कोई नदरी हर निहालिया।
2: संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
3: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अब न कोई।
2: ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ।
3: ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ।
2: ਸਾਚੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸ੍ਰੀ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ।
1: ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ।
2: ਸਚ ਅਲਖ ਉਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ

0: कर पाप सबूत को न भेटन पावे।
1: और की बात कहां के तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे।
0: दानव देव अपेव तुम्हें सब ही करते आवे।
1: भूमि का अस्पताल से सकल जट भुजंग सब।

0: से चतुरारन से रम नारक से सब हूँ मिल गायो।
1: वेद के देव न फेर लग्यो सब हार परे हर हाथ न आयो।
0: सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाथ सनातन ते आयो।
1: ध्यान करो तय को मन में जय को अमितो सबे जग छायो।
0: देव पुराण अपेद निर्पाण सब पच हारे।
1: पेद न पाए सक्यो अनपेद को खेद दहन शीर पुकारे।
0: आग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे।
1: आद नाद गाद पैक द्वैग जप्यो तिन ही कुल तारे।
0: स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे।

तमात पिता हम तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो तुम्हारी गात मित तुम ही

क्या लागे मेरा कबीर, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर जो किश किया सोहर किया। पयो कबीर कबीर सो कह टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसिया। गुरु के जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी नूर अरसों गुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच

वाहिगुरु। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास इको ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवें। प्रथम भगवत समरकै गुरु नानक ले त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस दिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधावै ताए। सब थाए हो सहाय। दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाए हो सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके। बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाए तेग वाहे देख के अर्ण डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारें दी कमद ध्यान करके। खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मे तो सीह दिते बंद बंद कटाए खोपर हाइयां चरखियां ते चढ़े आर्या नाल चराए गए गुरद्वार दे सेवल कुरबानी कीतिया धर्म ने हारा सिक्खी केसा सौसा नाल निभाही तिना दे कमां दा ध्यान करके। खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वार ने दे ध्यान करके। बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचा रियायत देग तेग फरते बिरदगी पैर पंथगी जीत श्री साहेब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दर्शन दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार। बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरतामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गए खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दन खालसा जी नूं बख्शो हे निमाण दमाण नेताणियां दे ताण न्योटियां दी ओड़ सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर आप जी दे चरणा कमला चरण आस है सतगुरु जीओ आप जी दी कृपा सदका दीवान सजे सजे हो दीवाना दे अंदर आसा की वार दे कीर्तन होए अनाथ साहब दे छे पौड़ियां जाप कीते गए हन बाणी पढ़दियां कोलों इक नेकहें प्रकार दे गलतियां भुलना चुकां दी खिमा बख्शिश करनी अगत कृपा करनी शुद्ध बाणी पाने ते सेवा करन दी समर्था बख्शिश करनी पढ़ी सोहनी बाणी दा पाप समूह संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा कृपा करनी आईआं संगतां दी हाजरी तिल फुल भेट हाजरी अपने नरते परवान करन दी जी समूह संगतां नूं दर कोलों सिखी सदक भरोसा अते नाम दी दातां बख्शिश करनियां सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर आप जी दर करदे प्रीतवान बीबी अश्विंदर कौर बीबी गुरप्रीत कौर तिन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास है आप कृपा करनी जी समूह परिवार नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी दर कौर सिखी सदक भरोसा ते नाम जातां बख्शिश करनियां सतगुरु जीओ आप जी दर करदे प्रीतवान सरदार जगदीप सिंह तिन्हां वल्लों सारे दिन दे देख दी सेवा ले गए है आप कृपा करनी सेवा थाए पाउणी मनोकामनावां गुरमत मेरा दर्शन संपूर्ण करने घर विच दुख दे नाश करने सुखां दे प्रकाश करने किरत कमाइयां विच बरकता पाउणियां सतगुरु जी आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दे सदके हाजर है दर परवान होए प्रसाद समूह संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करन कृपा करनी पवित्र राणी विच समूह संगतां नूं हुकम साहिब बख्शिश करके निहाल करना जी अखर वादा घाटा भुल जो माफ करनी सरबत दे काज रास करने सही प्यारे मेल जिन्हां मिले तेर नाम रतावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ।